0: Sonia.
1: Extreme energy drink.
2: एनएम बिगारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
3: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच्छ आफ्नो अमूल्य बचत आज खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
4: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि

0: स्कूल देखि कैंपस स्तर का पाठ्य पुस्तक गाइड गेस्ट पेपर लगायत का पाठ्य सामग्री
1: लोक सेवा आयोग का किताब
0: ऐन नियम कार्यालय विद्यालय तथा संस्था का लगी आवश्यक स्टेशनरी सामान तथा खेलकूद सामग्री का लगी हमी समझना गुणस्तरीय शिक्षा का लगी हमी प्रतिबद्ध छो
2: सुपथ मूल्य सेवा का लागि एकमात्र कर्नर अल्फा स्टेशनरी स्टोर्स एन्ड जनरल अर्डर सप्लायर वीरेन्द्र नगर छ बुद्ध पथ सुर्खेत सम्पर्क फोन नम्बर 083-521-1137।